0: Dave, West Indian Imports.
1: And we are huge fans.
2: So what did you think of the script?
3: ऐसे ऐसे गाने आप सबके लिए पेश किए जा रहे हैं तो दोस्तों अगली पेशकश हमारे लिए एक ड्यूएट के रूप में पेश करने जा रहे हैं समीर विजय कुमार और प्रियंका जी और चित्रगुप्त जी का संगीत आइए सुनते हैं काली टोपी लाल रुमाल से गाना लागी छूटे ना अब तो सनम